एक्स का एफ एम कवा वोलंग एम तनु कुछ आउंगा प्रखर मुगो सवजे से का के रादो के कवा तु का खाई से पंगो कोई खाई को रादो के नुमरो या वन इतन सेवा पेन नेखा एफ एम अनु तु तु कोई आउंगा वोलंग जिता गोई सा गोई से का के प्रखर मुगो को ना ता मसे कौन खन गो सुपा के कवा तु खाई से वे से के वोलंग जिता तनु कोई मा तमगोई ओ अगो सिदगे कनुसि सिकवा तो कई सिमतेन गुछु आउंगो वलंग गोइसा जिबन कागे अप्रखम गो कोंगा कुइन हेरे कवा तो कई सिमतेन गुछु आउंगो वलंग गोइसा जिबन कागे प्रोग्राम मा कोंगा ता कुइन अलि को वलंग नतु तो कुइ मा का वलंग जिचा गोइसा कवि सिगा मा कोंगा के राधो के मोंगो मसो तेंदुई तो मा ओलंग